0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।
1: बारिश में ड्राइवर हजरात एहतियात से गाड़ी चलाएं, क्योंकि जगह जगह बारिश का पानी कड़ा होता है, जिसकी वजह से लोगों की कपड़े खराब हो जाते हैं और फिर राह चलते लोग अक्सर बददुआएं देना शुरू कर देते हैं। बाज़ औक़ात तो बात लड़ाई तक पहुंच जाती है, इसलिए रफ्तार धीमी रखें और एहतियात करें। राह चलने वालों से भी इल्तिमास है कि बिला वजह सड़क पर जाने से गुरेज करें। अगर जरूरत ज्यादा हो तो गाड़ी न होने की सूरत में सड़क क्रॉस करें। जिम्मेदार शहरी बने और हुब्बुल वतनी का सबूत दें। शुक्रिया।
0: ये पैगाम आपको रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क की तरफ से पेश किया गया है। रेडियो अमन नेटवर्क, जन रंग अमन।

नवे ब्रजे नवे हेले नवे खुशाले। द मरगानों फग आवाजुना और द फिजा ताजा सुकून। दा वक्ते चिखपल जत सुकून वरकड़े और पल वस बख सोच सरा पेल कड़े। राजे चे यूशु द खुशाले द मुस्का और मुस्बतु खबरों सरा

0: स्वयं से ही हटकता अंधेर के लिए कर रखना अक्सर चिकलवा गजन शमशोन जमा पे बचौदले नमा ढेर ज्ञात मुख्तलिफ किस्म के क्रीम इस्तेमाल कर नमाते भी ये रिजल्ट न शुमिला नवाब रजकरक रेडियो बने में इकराम ला प्रोग्राम आवरे दो इसमें क्रिक क्रीम हाले सराय हबर कवाले नमा हम अरुसा शॉपिंग सेंटर ना इसमें क्रिक क्रीम रावल माशाल्लाह वा हफ्ता इस्तेमाल सरा जमा पे घर में सफा और हिस्सा शुए कजमा आवाज सुख हम चर्द चर्द और यूज ली जरूर इसमें क्रिक क्रीम इस्तेमाल करे इसमें क्रिक क्रीम पे चौदले न अलावा बदन में बिहारश हुई पिस्ता से बदन और सरवा सूजी ये मुसलमान पिंपर दवाजी ऋषि राशि डॉक्टर मसलो के जबरदस्त कार कवि
1: फाजिला पे पसर कई चादर पोशी।

0: are listening to Radio Ahmad Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: जहाँ मिले आपको तफरी,
3: जहाँ मिले आपको मालूमात,
2: और जहाँ गूंजे सिर्फ आपकी आवाज, दिन हो या रात,
3: रेडियो मन 88.4 करक हमेशा आपके साथ।
2: रेडियो मन 88.4 करक, अपनी आवाज अपनी पहचान।
4: दिन हो या रात, खुशी हो या तन्हाई, हर वक्त एक आवाज साथ हो। रेडियो अमन 88.4 करक, आपके हर लम्हे।

ये बिल्कुल चिमत भी आए के ना सी फुलानी से के दी तो आवाज नजबान में बिल्कुल क्लियर दी सी ओके दी आवाज सफर रहों दे हसी लश फीडबैक को मत रुका वैसी देखे से प्रोग्राम दी सी जनो टेंशन कस्टमर एक्स पाकिस्तान दी सी।

0: Τώρα είμαστε με τη Δάρτα που γεννήσε από τα σαπάρ και δεν τα σα έχω χαστηθεί.
1: Για να τι σε τα ρεχανά από σαπάρ και έχω με ίσμα βάσινγκ πόρτερ ο χαστηθεί.
0: Έσμα βάσινγκ πόρτερ. Μάρα είμαι τη μόχο κορτά national ο μάτι national. Καπνέιβολ βάσινγκ πόρτερ βορίβι. Κούρσε αξάρ γυλάρ τα κίσε τα σαράγγε σαρά προβρέ.
1: Βέλκολ τα ρεχανά τα γυλεύε χάρβαστε μουτάχα κούρσε κραλέ. Χωτσε καλά να με κούρτα ίσμα βάσινγκ πόρτερ βορτάλ σε ρικρέτη. Ο στούλ κούρβαλα να χωσούλτι.
0: अच्छा मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सराबरो उदार तो ये या चेप इश्मा वॉशिंग पाउडर से सदा से खास खासियत थी
1: तारे खाना इश्मा वॉशिंग पाउडर खास खासियत दागा दी चे कपड़े सा पर युक्त ले को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सर खत्म कवी जाकर सजूत की वो दिनोर सरफे पर नस्बात इश्मा वॉशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर दा कपड़े सा पर ही पवा लोसीना नखर पवी
0: شام از دی چه دام رکشلا ریزلت یا دای دارتا اویه چه داو موتا چیرتا میلا ویزی
1: تار کنا داو تو دا پا بانی گول شه اندرون لکی گیت جان زبه گاله پا شوی مارکی شه دیشما مین دیستیبیوتر حافظ دیر سیب سار او دارتا میلا ویزی

0: अच्छा दादा उसको सुन चल डर और दूसरा और नेक्स्ट कलर अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम खैर रे तू सड़ी माश को रखे मैं सो खबर के किम सीना सो किमा दवड़ा
1: गुलाले
0: अच्छा गुलाले दवड़ा गुलाले दवड़ तो प्रोग्राम शेयर कलाई वे सड़ी माशी वेलकम ही नहीं सरंग चला खोरा के मुफ खेल का सिग्नल है तू सोता बानवे तो से सिग्नल है बानवे का खुलो से सिग्नल है अच्छा दो मिनट खुलो से बेबी अब मानसी बस इन सलावों से फिलहाल से किमने गया ना जो ची सिग्नल की मा इशू दो पर बनी गोल से वो मुफ खेल सन अस जीप जीप बने ची किमने गया ना कॉल वाले सिग्नल चार की और नेट वाले सिग्नल फिलहाल चार ने की आओ खाना बस इंशाल्लाह मिर्जा हमेशा कुछ दही परिंदे पे मिर्जा सरंगे हाँ अपडेट मिलाओ शो और मिर्जा बोले दल चार मिर्जा पकपला काल में से रोल नमो चार दाग अपडेट अखपला एवरीथिंग सरश मेल का नमो माशाल्लाह आज किमने डेर जो तो दसे एवरीथिंग की नखपल पर दिस रहा सावमाल टाइम चीज सरंगे चेक दल उम्मे के दल उसे भाई मिर्जा को दे सर मिर्जा अखपल ले कभी ले गया वाल सर रफ्ता उशला ऐसे मिर्जा सब पता वो बाद ने रफ्ता उशला सर अच्छा अच्छा दमरा चार की प्रोग्राम से सर सर सवेल बस्तर में खड़ी दू चाहे चेर था तू सर दास शेवी क्या ना छे लिया उरोता लिया देने लवा चिकिम ने कहना चेर था पचा कर दिन में क्या ना लिया देने लवा चिकिम ने कहना चेर हाँ दिन में और शब्द जोन था उड़ाई हुआ दे सर सर चिकिम वे कपड़े देन वे खड़े हुए लेदा कपड़े दो वस्ती हुई और जोन चिकिम ने कहना सर शूट बुट से उड़ाई चेरा जो दूले दिन में वो चिकिम ने कहना सवा जबने पोते से نوغوسادر سی لیا سوکتے پوتی کی کوروال لیا دین ایل داغا سیس بل سی دیواجی پوتی شی بارون شی لیا دین ایل وچکی میکنن لیا دا سی مڑای وشی لیا بل سو اسوا
1: چای
0: رنگا ورود ها
1: سو
0: کرلو اسمی ها
1: بل میرو
0: خلو بسی سی ورود اوی اوی ویچی زدری ما ها तो वैसे उधर कपड़े देना वाई की खड़ी है देश सर सर जिकिम निकाना मेकअप देना वाई कराए सोमरा जग के चे मेकअप किम शुद्धिना जिकिम निकाना मेकअप सर डेढ़ जूता कोरी की डेढ़ जूत मेहनत की चरा आधे मो मेकअप मो सुरखी पाउडर दानशी लोडो युवा किंता
1: को
0: इतना जावली हम लोग इतने जाया नवाया अच्छा युवा किंता युवा किंता को इतना
1: ماوایا زخمی زخمی
0: سر ڈیر جو تمنا میں جس طرح کہ ماں یا زخمی زخمی داغان رو تھا پلے کا

0: शिफा ब्यूटी क्रीम दसा तारीफ मुख्ताज अनुज हुजेफा कंपनी शिफा फेस वॉश दसा तारीफ मुख्ताज अनुज हुजेफा कंपनी शिफा तेल बिल्कुल दसा तारीफ मुख्ताज अनुज और दागा रंग शैम्पू दा तारीफ मुख्ताज अनुज वेले जी चाय इस्तेमाल करी दी पजड़ा पूरे रिजल्ट पर तमिलाओ शवायदा दुने दुगीना लरई डबीना दी पमख दिमाग स्पिन रंग मोतर शवायदा दुने दुगे डबे तर से रही उखस्ता दिमाग रंग दे खरुब शवायदा पमख दे गंजारो गली शवी दो इंतजार खत्म है खबर सूचीना खत्म है नूर क्रीमे इस्तेमाल प्रेर दो रूशाई हुजेफा कंपनी शिफा पतरा सिदरता मिलाओ शी मुकमाल शिफा और दे तुसे मख बिल्कुल शी ठीक ठाक रुख जूड बारोबार बिल्कुल जी वाई ना चा राजू जी शी तुसे ता देर कदा से
1: क्रीमा
0: दे तुसे मख शी बले बले बेहतरीन जबरदस्त सफुई होशी दिमाग दगा माहौल मुसफा मख मु ठीक ठाक दशवेटे भी लगे वही
1: कना
0: दशवेटे में हल्का वंदे मसाज पल मखीना तवेर कवाई हुजेफा कंपनी शिफा ब्यूटी क्रीम ब्याह सबूत अप हुजेफा कंपनी शिफा बेटा मनसी बंदे भिंजई का खबर जी जनाब ने बिल्कुल जी तुझे इस्तेमाल के बेटा मनसी फेस वॉश द हुजेफा कंपनी चेर तो यही रोजाई का नन खुली दल नशे गर्मी खुशी शाब न मना उस खुदा से दुख ना छे दमरा दमरा दमरा दमरा दमरा दमरा ये बर रहो ना दुख दमरा वो वरी जी का छे से लबे खतरे जुड़े ने शाला दब से खेर उचावी सुधा से वो गए बिल्कुल जी दे जोन ख्याल सोते ही गर्मी दो गर्मी से लशपल जोन नौ पटावाई दे गर्मी दास नहीं जब कंबाले से वो पटकर मतलब दादा जी गर्मी ना जोन बहुत से सही जबकि मुझे किसी सर्दी भी की मुझे बहुत दिलाई कूलर फैन लगी दिलाई ए सी लगे दिलाई ये डांडे आगा सार चखे जबी दुले दिले आगा लगे दिलाई नबिया बरता अक्षय नहीं कहना एगनाबाद जी दा तेल दर कवा हुजेफा कंपनी शिफा तेल दिसार दे विस्तोन दे वर दवाले लुई अवले गण वाले दे पुरान ची मजबूत शी दिसार विस्तोन मुविजदा शी लुई शी गान शी शाली शी खैस्ता शी चमकदार शी

0: आई बिल्कुल पेंशन गलो नहीं हम मतले ओ बिल्कुल सिफर नौ सौ सताईस दो सौ इक्यानवे दो सौ बानवे जी अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम जी सुख तिर सर दिकुम जुइना बिल्कुल शबरबारी सर रेडियो दे जिन जबान का आवाज दे डबल सी और डेरा मना ना वली आवास हूँ सही बिल्कुल डेरा मनना चे और प्रोग्राम और हुए और शिरकत खमर सरा पोके ओके और सब शरीक है सरा जी सही सही बिल्कुल कोतल डैम के कशम हूँ सही बिल्कुल बिल्कुल सही खबर है तो मुर्दा बार बार आई चप्पल मशमून चिकुम दी स्पेशली और डीमुनु ना और बदा से और मौसम के चे आगा दे बरुनुनु मौसम भी आगे के और डीमुनु के उबा हम ज्योतिषी और आल तक चिकुम खावरा चिकुम दो अगल चिकड़ा भी आगा के स्लिप चिकुम दागा की जी मशमून लूट शी आल तक और किनारे मुंदे लंबी जी खूबशा चिकुम दो आगा स्लिप शी और बू जवरे तलूट शी बागे नहीं हुआ अदसा चिकुम दो जोड़ा शी बागे सरा टोल कूर टोला महला और पूरा जिला चिकुम दो आगा गमजन शी टोल मंडे त्रंडे हर सड़ी ते तकलीफ चिकुम दागा जोट
1: शी
0: बारा नो रुपये वरेगा जमा जनान न दे लमदकड़ल के तबुना चलो ठीक
1: छोड़
0: चलो ठीक छो और जो कोशिश करो।